ये कस्तो रहे छ भेना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लाहुरे हर ढल के को लेकिन साले क्या है बंदे चुर